प्रगट पई सगले जुग अंतर, गुरु नानक किए बड़े आई। गुरपूरे कृपा धारी, प्रभ पूरी लोच हमारी, कर इसनान ग्रह आए, अंध मंगल सुख पाए, संतो राम नाम निस्तरिए, उठत बैठत हर हर ध्याइए, आंदन हरा ध्याई आंदन सुकृत करिए, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, को बड़ भागी पाए, कोट जन्म के किल बखनाते, हर चरने तनाए, उस करो सदा प्रभ अपने, जन पूरी कल राखी, जी जंत सह पवे पवित्रा, सतगुर की सच साखी, बिघन बनासन सब दुख नासन, सतगुर नाम दड़ाया, खोए पाव पैसा पावन, जन नानक सुख घर आया। सो कहो टल गुर सेविए, अहनिस सहज सवाई, दर्शन परसे गुरु के, जन्म मरण दुख जाए, होवे सिफत कसम दी, नूर अरसों कुरसों झटिया, तुद डिठे सचे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिया, सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहां दे साहू, जिस पास बैठे

0: तक न पाए, मने पथ सो प्रगट जाए।
1: मने मग न चले पंथ, मने धर्म सेती सन बंद।
0: ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए।
1: मने पावे मुख द्वार, मने परवारे साधार।
0: मने तरह तरह गुर सिख, मने नानक पवे न भिख।
1: ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए।
0: पंच परवान पंच प्रधान, पंचे पावे दरगह मान।
1: पंचे सोहे दारा जान, पंचा का गुर एक ध्यान।
0: जे को कह करे विचार, करते के करने नाही सुमार।
1: तौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जन सूत।
0: जे को बुझे होवे सच्यार, तबले ऊपर के तापार।
1: धरती होर परे होर, दिसते पार तले कवन जोर।
0: जी जात रंगा के नाव, सबना लिखिया बुढ़ी कलाम।
1: यो लेखा लिख जाने कोए, लेखा लिखिया केता हुए।
0: केता तान सवाले हो रूप, केती दात जाने कौन खूद।
1: किता पसाओ इको कवाओ, तिसते हुए लख देरी आओ।
0: कुदरत कवन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार।
1: जो तुद भावे साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार।
0: असंख जप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तप ताओ।
1: असंख ग्रंथ मुख वेद पार, असंख जोग मर रहे उदास।
0: असंख भक्त गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार।
1: असंख सूर मोह पख सार, असंख मोले बलाए तार।
0: कुदरत कवन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार।
1: जो तुद भावे साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार।
0: असंख मूर्ख अंध घोर, असंख चोर हराम खोर।
1: असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गाल वड़ हत्या कमाए।
0: असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कुड़ियार कूड़े फिराहे।
1: असंख मलेश मल पाख खाहे, असंख निंदक सकरे पार।
0: नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार।
1: जो तुद भावे साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार।
0: असंख नाव असंख थाव, गम गम असंख लो।
1: असंख कहे सिर भार होए, अखरी नाम अखरी सलाह। अखरी ज्ञान गीत गुण गाहा,
0: अखरी लिखन बोलन बाण, अखरा सिसन जोग बखान।
1: जिन ए लिखे तिस सर नाहे, जे फरमाए तिब तिब पाहे।
0: जेता कीता तेता नाओ, बिना वै नाही को थाओ।
1: कुदरत कवन कहा विचार, वारिया न जामा एक बार।
0: जो तुद भावे साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार।
1: भरिए हाथ पैर तन देह, पानी धोते उतर सखे।
0: भूत पलीती कपड़ होए, दे साबुन ले ए ओ तोए।
1: भरिए मत पापा के संग, ओ धोवे नामे के रंग।
0: उन्नी पापी आखण नाही, कर कर करना लिख ले जाहो।
1: आपे बीज आपे ही खाहो, नानक हुक्मी आव जाहो।
0: तीरथ तप दयादत दान, जे को पावे तिल का मान।
1: सुनिया मनिया मन कीता पाओ, अंतरगत तीर्थ मल नाओ।
0: साबुन तेरे में नाही कोए, बिन गुण कीते भक्त ना होए।
1: स्वस्थ आस बाणी बरमाओ, सत सुहान सदा मन चाओ।
0: कवन सुवेला कवत कवन, कवन थित कवन वार।
1: कवन सुरुति माह कवन, जेत होवा आकार।
0: बेल न पाया पंडती, जे होवे लेख पुराण।
1: भक्त न पायो कादिया, जे लिखन लेख कुरान।
0: जित वार न जोगी जाने, रुतमा हो ना कोई।
1: जा करता सरठी को साजे, आपे जाने सोई।
0: किव कर आखा किव सालाही, क्यों वरनी किव जाना।
1: नानक आखन सब को आखे, एक दू एक सियाना।

0: जाए जे को कहे पिछे पछताए।
1: जिथे घड़िए सुरत महात्मा न बुद्ध, जिथे घड़िए सुरा सदा की सुध।
0: कर्म खंड की बाणी जोर, तिथे होर न कोई होर।
1: जिथे जोत महाबल सूर, तिन में राम रहा पर।

0: अरूप है, अनूप है, अजू है, अपू है,
1: अलेक है, अपेक है, अनाम है, अकाम है,
0: अजय है, अबे है, अजीत है, पीत है,
1: निर्माण है, निधान है, त्रिवर्ग है, असर्ग है,
0: अनिल है, अनाद है, जय है, आजाद है,
1: अजन्म है, अवर्ण है, अपूत है, अपर्ण है,
0: अगंज है, अपंज है, अचूच है, अचंज है,
1: अमीक है, रफीक है, अदंध है, अबंध है,
0: निर्बूज है, असूज है, अकाल है, अजाल है,
1: अलाह है, अजाह है, अनंत है, महंत है,
0: अलीक है, नरसरीक है, नरलंब है, असंभ है,
1: अगम है, अजम है, अपूत है, अशूत है,
0: अलोक है, अशोक है, अकर्म है, अभर्म है,
1: अजीत है, अपीत है, अबाह है, अगाह है,
0: अमान है, नदान है, अनेक है, फिर एक है,
1: कुचंग पयात छंद,
0: नमो सर्वमान्य समस्ते नदाने, नमो देव देवे अपेखी अपेवे,
1: नमो काल काले, नमो सर्व पाले, नमो सर्व गौणे, नमो सर्व पौणे,
0: अनंगी नाथे, नरसंगी परमाथे, नमो पान पाने, नमो मान माने,
1: नमो चंद्र चंद्रे, नमो पान पाने, नमो गीत गीते, नमो तान ताने,
0: नमो नृत्य नृत्य, नमो नाद नादे, नमो पान पाने, नमो बाद बादे,
1: अनंगी अनामे समस्ती स्वरूपे, परपंगी परमाथे समस्ती बभूते,
0: कलंकंग बनाने ने कलंकी स्वरूपे, नमो राज और जवेश व्यंग परम रूपे,
1: नमो जोग जुगेश्वर परम सिद्धे, नमो राज और जवेश्वर परम वृद्धे,
0: नमो शास्त्र पाणे, नमो आसुर पाणे, नमो परम ज्ञाता, नमो लोक माता,
1: अपेक्षी अपरमी अभोगी अभुक्ते, नमो जोग जुगेश्वर परम जुगते,
0: नमो नित नारायण क्रूर कर्मे, नमो प्रेत प्रे देवे सो धर्मे,
1: नमो रोग हर्ता, नमो राग रूपे, नमो शाह शाहंग, नमो भूपे,
0: नमो दान दाने, नमो मान माने, नमो रोग रोगे, नमो संग सनाने,
1: नमो मंत्र मंत्रंग, नमो जंत्र जंत्रंग, नमो इष्टे इष्टे, नमो तंत्र तंत्रंग,
0: सदा सच दानंद सर्विंग प्रणासी, अनूपे अरूपे समस्त निवासी,
1: सदा सिद्धा बुद्धा वृद्ध करता, अदो उर्धर धंग गंग ओग हरता,
0: परंग परम परमेश्वरंग प्रोष पालंग, सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालंग,
1: अशेदी अपेदी अनामंग कामंग, समस्तो पराजी समस्त स्तामंग, तेरा जोर चाचरी शंद,
0: जले है, थले है, अपीत है, अपे है,
1: प्रभु है, अजू है, अदेश है, अपेश है, पुचंग पयात शंद,
0: अगाध अबाध अनंद स्वरूपे, नव सर्व माने समस्ती निधाने,
1: नमस्वंग निर्नाथे, नमस्वंग परमाथे, नमस्वंग गंजे, नमस्वंग पंजे,
0: नमस्वंग अकाले, नमस्वंग अपाले, नमो सर्व देशे, नमो सर्व पीसे,
1: नमो राज राजे, नमो साज साजे, नमो शाह शाहे, नमो महा माहे,
0: नमो गीत गीते, नमो प्रीत प्रीते, नमो रोख रोखे, नमो सुख सुखे,
1: नमो सर्व रोगे, नमो सर्व भोगे, नमो सर्व जीतंग, नमो सर्व पीतंग,
0: नमो सर्व ज्ञानंग, नमो परम तानंग, नमो सर्व मंत्रिंग, सर्व जंत्रिंग,
1: नमो सर्व दृसंग, नमो सर्व कृसंग, नमो सर्व रंगे तरपंगी अनंगे,
0: नमो जीव जीविंग, नमो बीज बीजे, अखिजे अभिजे, समस्तंग प्रसिजे,
1: कृपालंग स्वरूपे, को कर्मंग प्रणासी, सदा सर्वदा हृदय सिद्धंग निवासी, चरपट शंत प्रसाद,
0: अमृत कर्मे अमृत धर्मे, खल जुगे अचल पोगे,
1: अचल राजे अटल साजे, अखल धर्मंग लख कर्मंग,
0: सर्विंग दाता सर्विंग ज्ञाता, सर्विंग पाने सर्विंग माने,
1: सर्विंग प्राणिंग सर्विंग त्राणिंग, सर्विंग पुक्ता सर्विंग जुगता,
0: सर्विंग देवे सर्वे पेवे, सर्विंग काले सर्विंग पाले,
1: प्रवास शंत व प्रसाद,
0: आद रूप अनाद मूर्त, जोन पुरख या पार,
1: सर्व मान तिरमान देव पेव आदि उदार,
0: सर्व पालक सब कालक, सब को पुन काल,
1: जतर दतर विराजे अवधूत रूप रसाल,
0: नाम ठाम ना जात जाका, रूप रंग ना रेख,
1: आद पुरख उदार मूर्त, जोन आद सेख,
0: देश और ना पे जाका, रूप रेख ना राग,
1: जतर दतर दिशा विशा होए फैलो राग,
0: नाम कान बहन पेखत, ताम होना जाहे,
1: सर्व मान सर्वतर मान, सदैव मान ताहे,
0: एक अनेक मूर्त अनेक दर्शन किन रूप अनेक
1: खेल खेल खेल खेलन अंत को फिर एक
0: जे भेवना जाने जा वेद और कतेव
1: रूप रंग न जात पात सो जानिए के जेब
0: सात मात न जात जाकर जानो मान विहीन
1: चक्कर बक्कर फिरे चतुर चक मानिए पुर दीन
0: लोक चौदह के बिखे जग जाप ही जय जाप
1: आद देवन आद मूर्त थाप्यो सबे जय थाप
0: परम रूप पनीत मूर्त पूर्ण पुरख अपार
1: सर्व विश्व रचयो स्वयंभव गणन पंजन हार
0: कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख अदेश
1: सर्व धाम सो परम रहत पूज लख पेश
0: अंग रागना रंग जाका जात पात ना नाम
1: गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुक्त दायक काम
0: आप रूप अमीक अन औस्तत एक पुरख अवतूत
1: गर्भ गंजन सर्व पंजन आद रूप असूत
0: अंग हीन अपंग अनात्म एक परख अपार
1: सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतिपार
0: सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनपेख
1: सर्व शास्त्र न जाने जह रूप रंग अर रेख
0: परम वेद प्राण जाखा नेत पाखत नित
1: कोट सिमरत प्राण शास्त्र न आवे बहुचित मद पार शंत व प्रसाद
0: गुणगान उदार महिमा अपार आसन अपंग उपमा अनांग
1: अनुपम प्रकाश निस्दिन अनास राजान बाहो शाहान शाहो
0: राजान राज पनान पान देवान उपमा महान
1: इंद्रान इंद्र बालान बाल रंग कान रंग कालान काल
0: अनपूत अंग अब अपांग गत में तो पार गुण गण उदार
1: गुण गण पर नाम निरपय निकाम अद्भुत प्रचंड मित गत खंड
0: इलसा कर्म अदृष्ट धर्म सर्व पंडन अंडन बड
1: चाचरी शांत व प्रसाद
0: गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे
1: करियम करियम ने नामे अकामे पचंग पयात शंद
0: चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र जाने चतर चक्र जाने
1: चतर चक्र वर्ती चतर चक्र पाती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले
0: चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र माने चतर चक्र जाने
1: चाचरी शंद
0: ना सतरे ना मित्रे ना परमंग ना पितरे
1: ना कर्मंग ना काये अजन्मंग अजाये
0: ना चतरे ना मित्रे परे हैं पवित्रे
1: परदिसे अदिसे अदृसे अकृसे भगवती शंत व प्रसाद कथते
0: आचर जेचे के आ पिज पेचे के आ गंज कर्मे के आ पांज परमे
1: के आ पिज लुके के अदित सुके के अवधूत भरने के बेभूत करने
0: राजंग प्रमाक तारम तजा के आसो को बाने के सर्व अपरने
1: के जतन कृति है के शतरंग शत्री है के ब्रह्मंग स्वरूप है के अनुपव अनुप
0: के आद अदेव है के आप अपेव है चितर विहीन के एक अधीन
1: के रोजी रसा के रही मेरे हाके के पाक बैव है के गैबुल गैब है
0: के अफुवल गुनाह है के शहान शाह है के कारण को नेंदे हैं को रोजी ध्यान दें
1: के आज करीम है के कर्मं कलीम है के सर्वं कली है के सर्वं दली है
0: के सर्वतर माने के सर्वतर दाने के सर्वतर गोने के सर्वतर पोने
1: के सर्वतर देश है के सर्वतर भेष है के सर्वतर राज है के सर्वतर साज है
0: के सर्वतर दीने के सर्वतर नीने के सर्वतर जाहो के सर्वतर पाहो
1: के सर्वतर देश है के सर्वतर भेष है के सर्वतर काल है के सर्वतर पाल है
0: के सर्वतर हंता के सर्वतर गंता के सर्वतर पेखी के सर्वतर पेखी
1: के सर्वतर काज है के सर्वतर राज है के सर्वतर सुख है के सर्वतर पोख है
0: के सर्वतर तराणे के सर्वतर पराणे के सर्वतर देशे के सर्वतर पीछे
1: के सर्वतर मानिए सदैव अंग प्रदानी है के सर्वतर जापिए के सर्वतर थापिए
0: के सर्वतर पाने के सर्वतर माने के सर्वतर इंद्रे के सर्वतर चंद्रे
1: के सर्वं कली में के फरमंग फही में के आकल अला में के साहेब कला में
0: के हुस्नल वजू में तमाम रजू है हमेशा सलामे सली खत्म दामे
1: गनीमल शिखस्ते गरीबल परस्ते बिलंदर मकाने जमीन और जमाने
0: कमियल तमामे रजुल न दाने ਹਰੀ ਫਿਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜਗ ਜਕੀਨੇ
1: ਅਨੇਕਲ ਤਰੰਗ ਹੈ ਅਭੇਦ ਹੈ ਭੰਗ ਹੈ ਜੀਜ਼ਲ ਨਿਵਾਸੈਂਗ ਨੀਮਲ ਖਰਾਜੈ
0: ਨਿਰੁਕਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤ੍ਰਮੁਕਤ ਅਭੂਤ ਹੈ ਪਰ ਭੁਗਤ ਪ੍ਰਵਾਸ ਯੁਕਤ ਸੁਧਾ ਹੈ
1: ਸਦੈਵ ਅੰਗ ਸਰੂਪ ਹੈ ਅਭੇਦੀ ਅਨੂਪ ਹੈ ਸਮਸਤੋ ਪਰਾਜ ਹੈ ਸਦਾ ਸਰਬ
0: ਸਾਜ ਹੈ ਸਮਸਤ ਸਲਾਮ ਹੈ ਸਦੇਵਲ ਅਕਾਮ ਹੈ ਨਿਰਬਾਧ ਸਰੂਪ ਹੈ ਅਗਾਧ ਹੈ ਅਨੂਪ ਹੈ
1: ਓਗਾਧ ਰੂਪੇ ਅਨਾਦ ਸਰੂਪੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਤ੍ਰਿਕਾਮੇ
0: ਤੁਰਵਰਗਨ ਤੁਰਵਾਦੇ ਅਗੰਜੇ ਅਗਾਧੇ ਸੁਵਿੰਗ ਸਰ ਭਾਗੇ ਸੁ ਸਰਬਾ ਅਨੁਰਾਗੇ
1: ਭੁਗਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਅਚਿਜ ਹੈ ਅਛੂਤ ਹੈ ਕੇ ਨਰਕੰਗ ਪ੍ਰਣਾਸ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥੀ ਅਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੈ
0: ਨਿਰੁਕਤ ਪ੍ਰਭਾ ਸਦੈਵ ਸਦਾ ਹੈ ਵਿਯੁਕਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਪਰ ਜੁਕਤ ਅਨੂਪ ਹੈ
1: ਨਿਰੁਕਤ ਸਦਾ ਹੈ ਵਿਭੁਕਤ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਅਨੁਕਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਪਰ ਜੁਕਤ ਅਨੂਪ ਹੈ ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ
0: ਅਭੰਗ ਹੈ ਅਨੰਗ ਹੈ ਭੇਖ ਹੈ ਲੇਖ ਹੈ
1: ਅਪਰਮ ਹੈ ਅਕਰਮ ਹੈ ਅਨਾਦ ਹੈ ਜੁਗਾਦ ਹੈ
0: ਅਜੇ ਹੈ ਅਭੇ ਹੈ ਅਭੂਤ ਹੈ ਅਤੂਤ ਹੈ
1: ਅਨਾਸ ਹੈ ਉਦਾਸ ਹੈ ਅਦੰਦ ਹੈ ਅਬੰਦ ਹੈ
0: ਅਭਗਤ ਹੈ ਬਰਕਤ ਹੈ ਅਨਾਸ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ
1: ਨਿਚਿੰਤ ਹੈ ਸੁਨਿੰਤ ਹੈ ਅਲੇਖ ਹੈ ਅਦੇਖ ਹੈ
0: ਅਲੇਖ ਹੈ ਭੇਖ ਹੈ ਡਾਹ ਹੈ ਅਗਾਹ ਹੈ
1: ਅਗੰਭ ਹੈ ਅਨੀਲ ਹੈ ਅਨਾਦ ਹੈ
0: ਅਨਿਤ ਨਾ ਸੁਨਿਤ ਹੈ ਅਜਾਤ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ
1: ਚਰਪਟ ਸ਼ੰਤ ਵੈ ਪ੍ਰਸਾਦ
0: ਸਰਬਿੰਗ ਹੰਤਾ ਸਰਬਿੰਗ ਗੰਤਾ ਸਰਬੰਗ ਖਿਆਤਾ ਸਰਬੰਗ ਗਿਆਤਾ
1: ਸਰਬੰਗ ਹਰਤਾ ਸਰਬੰਗ ਕਰਤਾ ਸਰਬੰਗ ਪ੍ਰਾਣੰਗ ਸਰਬੰਗ ਤ੍ਰਾਣੰਗ
0: ਸਰਬੰਗ ਕਰਮੇ ਸਰਬੇ ਧਰਮੇ ਸਰਬੰਗ ਜੁਗਤਾ ਸਰਬੰਗ ਮੁਕਤਾ
1: ਰਸਾਵਲ ਸ਼ੰਤ ਵੈ ਪ੍ਰਸਾਦ
0: ਨਮੋ ਨਰਕ ਨਾਸੇ ਸਦੈਵੰਗ ਪ੍ਰਕਾਸੇ ਅਨੰਗਨ ਸੁਪੇ ਭੰਗੈ ਬਭੂਤੇ
1: ਪਰਮਾਥੰਗ ਪਰਮਾਥੇ ਸਦਾ ਸਰਬ ਸਾਥੇ ਅਗਾਧ ਸਰੂਪੇ ਨਿਰਵਾਦ ਬਭੂਤੇ
0: ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ ਤਰਭੰਗੇ ਤਰਕਾਮੇ ਨਿਰਭੰਗੇ ਸਰੂਪੇ ਸਰਬੰਗੀ ਅਨੂਪੇ
1: ਨਾ ਪੋਤਰੈ ਨਾ ਪੁੱਤਰੈ ਨਾ ਸਤਰੈ ਨਾ ਮਿੱਤਰੈ ਨਾ ਤਾਤੈ ਨਾ ਮਾਤੈ ਨਾ ਜਾਤੈ ਨਾ ਪਾਤੈ
0: ਨਿਰਸਾਕੰਗ ਸਰੀਕਾ ਅਮਿਤੋ ਮੀਕਾ ਸਦੈਵਿੰਗ ਪ੍ਰਭ ਹੈ ਅਜੇ ਹੈ ਅਜਾ ਹੈ
1: ਭਗਵਤੀ ਸ਼ੰਤ ਵੈ ਪ੍ਰਸਾਦ
0: ਕੇ ਜਹਰ ਜਹੂਰ ਹੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਲਾਮ ਹੈ ਸਮਸਤਲ ਕਲਾਮ ਹੈ
1: ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਕੇ ਹੁਸਨਲ ਚਿਰਾਗ ਹੈ ਕੇ ਕਾਮਲ ਕਰੀਮ ਹੈ ਕੇ ਰਾਜਕ ਰਹੀਮ ਹੈ
0: ਸੁਰੋਜੀ ਜਹਿੰਦ ਹੈ ਕੇ ਰਾਜਕ ਰਹਿੰਦ ਹੈ ਕਰੀਮ ਔਰ ਕੁਮਾਰ ਕੇ ਹੁਸਨ ਜਮਾਲ ਹੈ
1: ਗਨੀਮਲ ਖਿਰਾਜ ਹੈ ਗਨੀਮਲ ਨਿਵਾਜ ਹੈ ਹਰੀ ਫਲ ਸ਼ਿਕਨ ਹੈ ਹਰਾਸਲ ਫਿਕਨ ਹੈ
0: ਕਰਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਸ ਹੈ ਸਮਸਲ ਨਵਾਸ ਹੈ ਅਗੰਜਲ ਗਨੀਮ ਹੈ ਰਜਾਇ ਕੇ ਰਹੀਮ ਹੈ
1: ਸਮਸਲ ਜੁਬਾਨ ਹੈ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਾ ਹੈ ਕੇ ਨਰਕੰਗ ਪ੍ਰਣਾਸ ਹੈ ਵੈਸਟਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ
0: ਕੇ ਸਰਬਲ ਗਵਨ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਵਨ ਹੈ ਤਮਾ ਮੁਲ ਤਮੀਜ਼ਾ ਸਮਸਤਲ ਅਜੀਜ ਹੈ
1: ਪਰੰਗ ਪਰਮੀਸ ਹੈ ਸਮਸਤਲ ਅਜੀਜ ਹੈ ਦੇਸੋਲ ਅਲੇਖ ਹੈ ਹਮੇਸੋਲ ਅਭੇਖ ਹੈ
0: ਜਿਮਨਲ ਜਮਾ ਐਮੀ ਕਲਮ ਕਰੀ ਮੁਰਕ ਮਾਰ ਕੇ ਜੁਰਤ ਜਮਾਲ ਹੈ
1: ਕੇ ਅਚਲੰਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਕੇ ਮਿਤੋ ਸੁਭਾਸ ਹੈ ਕੇ ਅਜਬ ਸਰੂਪ ਹੈ ਕੇ ਮਿਤੋ ਬਭੂਤ ਹੈ
0: ਕੇ ਮਿਤੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੇ ਆਤਮ ਪ੍ਰਮੰਕ ਚਲੰਗ ਅਨਾਗਿਆ ਕੇ ਮਿਤੋ ਅਭੰਗ ਹੈ
1: ਮਦਭਾਰ ਸ਼ੰਤ ਵੈ ਪ੍ਰਸਾਦ
0: ਮਨ ਮਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਗੁਣ ਗਾਨ ਮਦਾਮ ਅਰ ਵਰ ਗੰਜ ਹਰ ਨਾ ਪ੍ਰਭੰਜ
1: ਅਨ ਗਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਮੁਨ ਮਨ ਸਲਾਮ ਹਰ ਨਰ ਅਖੰਡ ਬਨਰ ਮੰਡ
0: ਅਨੁਭਵ ਅਨਾਸ ਮੁਨਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਣਗਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਜਲ ਥਨ ਮੁਦਾਮ
1: ਅਨਸ਼ਿਜ ਅੰਗ ਆਸਨੇ ਅਪੰਗ ਉਪਮਾ ਪਾਰ ਗਤ ਮਿਤ ਦਰ
0: ਜਲ ਥਲ ਅਮੰਡ ਦਿਸ ਬਿਸ ਅਪੰਡ ਜਲ ਥਲ ਮਹੰਤ ਦਿਸ ਬਿਸ ਬੇਅੰਤ
1: ਅਨੁਭਵ ਅਨਾਸ ਤ੍ਰਿਤ ਤੁਰਾਸ ਆਜਨ ਬਾਹੋ ਇਕ ਸਦਾ ਹੋ
0: ਓਮਕਾਰ ਆਦ ਕਥਨੇ ਅਨਾਲ ਖਲ ਖੰਡ ਕਿਆ ਗੁਰਬਰ ਅਕਾਲ
1: ਕਰ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਚਿਤ ਚਰਨਾਮ ਅਨਸੀ ਜਗਾਤ ਆਜ ਜਨਾ ਬਾਤ
0: ਅਨ ਜੰਜ ਗਾਤ ਅਨ ਰਾਂਝ ਬਾਤ ਅਨ ਟੁੱਟ ਭੰਡਾਰ ਅਨ ਠੱਟ ਅਪਾਰ
1: ਆਜੀਤ ਧਰਮ ਅਰਜੀਤ ਕਰਮ ਅਨ ਬਣ ਅਨੰਤ ਦਾਤਾ ਮਹੰਤ ਹਰ ਬੋਲ ਮਨਾ ਸ਼ੰਖ ਵੈ ਪ੍ਰਸਾਦ
0: ਕਰਨਾਲੇ ਹੈ ਅਰ ਕਾਲੇ ਹੈ ਖਲਖੰਡਨ ਹੈ ਮੈਂ ਮੰਡਨ ਹੈ
1: ਜਗਦੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਕਲ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਰਵਾਰਣ ਹੈ
0: ਕਿਰਤ ਕੇ ਧਰਨ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨ ਹੈ ਮਨ ਮਾਨੇ ਹੈ ਜਗ ਜਾਣੇ ਹੈ
1: ਸਰਬੰਗ ਭਰ ਹੈ ਸਰਬੰਗ ਕਰ ਹੈ ਸਰਪਾਸਿਆ ਹੈ ਸਰਵਨਾਸਿਆ ਹੈ
0: ਕਰਨਾਲ ਕਰਨਾਕਰ ਹੈ ਬਸੰਬਰ ਹੈ ਸਰਵੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਜਗਦੇਸ਼ਵਰ ਹੈ
1: ਬ੍ਰਹਮੰਡਸ ਹੈ ਖਲਖੰਡਸ ਹੈ ਪਰਤੇ ਪਰ ਹੈ ਕਰਨਾਕਰ ਹੈ
0: ਅਜਪਾ ਜਪ ਹੈ ਥਪਾ ਤਪ ਹੈ ਕਿਰਤਾ ਕਿਰਤਾ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਅਮ੍ਰਿਤ ਹੈ
1: ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਕਰਨਾਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਕ੍ਰਿਤਾ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਧਰਨੀ ਤ੍ਰਿਤ ਹੈ
0: ਅਮਤੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਅਕਿਰਤਾ ਕਿਰਤਾ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਅਮ੍ਰਿਤ अमृत है।
1: अजब्बा कृत है अमृता अमृत है, निर्नायक है कलकायक है,
0: बसंबर है करनायक है, निरपनायक है सर्वपायक है,
1: पापंजन है अर्गंजन है, रिपतापन है जप जापन है,
0: अकलिंग कृतन सर्वा कृतन, कर्ता कर है हरता हर है,
1: परमात्म है सर्वात्म है, आत्म बस है जस के जस है, पुचंग पयात छंद,
0: नमो सूरज सूरजे, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे,
1: नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे,
0: नमो राज सिंह ताम सिंह सात रूपे, नमो परम ततंग अततंग स्वरूपे,
1: नमो जोग जोगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने,
0: नमो युद्ध युद्धे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो भोज भोजे, नमो पान पाने,
1: नमो कले कर्ता, नमो शांत रूपे, नमो इंद्र इंद्रे अनादंग बबूते,
0: अलंकार रूपे अलंकार अलाके, नमो आस आसे, नमो बाक बाके,
1: अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे, तरपंगी तरकाले अनंगी अकामे, एक अक्षरी छंद,
0: अजय अले अपे अबे,
1: अबू अजू अनास अकास,
0: अगांज पांज अलाख।

0: ना रूपे ना रेखे
1: कर मंगा पर मंगा गंजे अलेखे पुचंग पयात शंद
0: नाम सर प्रणामे समसर प्रणासे अगंजल नामे समसर नेवासे
1: निरकामंग बेपूते समस्तल स्वरूपे को कर्मंग प्रणासी सो धर्मंग बेपूते
0: सदा सच दा नंद सतरंग प्रणासी करी मुन कनंदा समसर नेवासी।

0: कर विश्वभर कासा सकल काल का किया तमाशा
1: जवन काल जोगेश्वर कियो वेद राज ब्रह्मा जू थियो
0: जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा
1: जवन काल सब जगत बनायो देव दान जश्न ने पजायो।

अवरत स्वामी तुम कर सिख बारह से संग्रह जे तो तब श्रणी प्रयत्न के दुष्ट दुख मरे।

तिनको दर ढोई नाही, कोई जाय मिले तिन निंदक मोह फिट फिकै थुक थुक मोह पाए। जो सतगुरु फिटकै से सब जगत फिटकै, नित पबल पूस

अंदर हट न ले है, गुरमुख सौदा जो करे हर वस्त संभाले। नाम निधान हर गुण जिए हीरे परवाले, मिणकाया जे होर थै तन खोज दे से मूड़ बेताले। से उजड़ परम पवाइए जो झाड़ गे झाड़ मिर्ग पाले। सलोक महला चौथा, जो निंदा करे सतगुरु पूरे की, सौखा जग में होया नर घोर दुख खूह है उत्थे ओ पगड़ ओ ढोया। को पुकार कूणा सुने ओखा हो।

नाम समाए पौड़ी, ये शरीर सब धर्म है, जिसे अंदर सच्चे की विच जोत, गोहज रतन विच लुक रहे, कोई गुरमुख सेवा सिव कड्डे खोत, सव्या तुम राम पछाणिया, ता एक रव्या एक कोत पोत, एक देखे एक मन्या।

आवतरे सब कुंभ सो तिन पीछे सब जग छड़ाए जन नानक को हर मेल जानो तिन दिविद वेख वेख हम जीवाए महला चौथा सा धरती बई हरियावले जिथे मेरा सतगुरु बैठा जिथे मेरा सतगुरु बैठा आए से जंत पै हरियावले जिन मेरा सतगुरु देखिया जाए धन धन पिता धन धन कुल धन धन सोजननी जिन गुण जिन गुरु जनया माए धन धन गुरु जिन नाम राधया आप तरिया जिन जिठा तिना लै छड़ाए हर सतगुरु मिलो दया कर जन नानक तो वै पाए पौड़े सत सचा सतगुरु अमर है जिस अंदर हर उतारिया सत सचा सतगुरु पुरख है जिन काम क्रोध बिख मारिया जा डिठा पूरा सतगुरु तंदरो।

तिनके सब पाप गुवाए, हर दर गए मुख उजले बो शोभा पाए। जा नानक मंगे धूड़ तिन, जो गुर कै सिख मेरे फाए। पौड़ी वाक्ष लाए शिव सा सा सचे की वड्याए, साला ही सच सला सच सच कीमत किने न पाए। सच सच सच्चा रस जिन चाखिया से तृप्त रहे।

0: सोए।
1: जो कुछ कीनो सो अपने रंग
0: सबे दूर सब उनके संग।
1: बुझे देखे करे विवेक
0: आपे एक आपे अनेक।
1: मरे ना बिन से आवे ना जाए
0: नानक साधी ले असमाई।
1: आप उपदेशे समझे आप
0: आपे रचिया सबके साथ।
1: आप कीनो आपन बिस्तार
0: सबे करने हार।
1: उसते पहन कहो किस होए
0: कांत नंतर के सोए।
1: अपने चलत आप करने हार
0: करे रंग पार।
1: मन में आप मन अपने माहे
0: कीमत
1: सत सत सत प्रभ स्वामी। सच सच सच सब कीना भला भला भला तेरा रूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत। संत सरन जो जन परे
0: सो जन हार।
1: संत की निंदा नानका
0: बहर बहर अवतार। अष्टप्रहरी
1: संत के दुखन आर जा कटे
0: संत के दुखन जमते नहीं छूटे।
1: संत के दुखन सुख सब जाए
0: संत के दुखन नरक में पाए।
1: संत के दुखन मत होए मलीन
0: संत के दुखन सो पाते हीन।
1: संत के हते को रखे ना कोए
0: संत के दुखन थान प्रस्त होए।
2: संत कृपाल कृपा जे करे
0: नानक संसग निंदक भी करे।
2: संत के दुखन ते मुख भवे
0: संतन के दुखन
2: संतन के दुखन सर्प जोन पाए
0: संत के दुखन अंतरिक्ष जोन करमाए।
2: संतन के दुखन तृष्णा में जले
0: संत के दुखन सब को चले।
2: संत के दुखन तेज सब जाए
0: संत के दुखन नीच न जाए।
2: संत दुखी का था को ना
0: नानक सर पावे ता ओ बिगत पाए।
2: संत का निंदक महाताई
0: संत का निंदक हंटे करना पाए।
2: संत का निंदक महात्यारा
0: संत का निंदक परमेश्वर मारा।
2: संत का निंदक राज ते ही
0: संत का निंदक
2: संत के निंदा को सर्व रोग
0: संत के निंदा को सदा योग।
2: संत की निंदा दोख में दोख
0: नानक संत पावे तंस का पी होए मोख।
2: संत का दुखी सदा पवित्र
0: संत का दुखी किसे का नहीं मिट।
2: संत के दुखी को डान लग गए
0: संत के दुखी को सर त्याग गए।
2: संत का दुखी महा अहंकारी
0: संत का दुखी सदा भिखारी।
2: संत का दुखी जन में मरे
0: संत के दुखना सुख दे करे।
2: संत के दुखी को नाही ठाव
0: नानक संत पावे मलाए।
2: संत का दुखी अध बीच ते टूटे
0: संत का दुखी किते काहे न पहुंचे।
2: संत के दुखी को ध्यान परमाई
0: संत का दुखी उजड़ पाए।

0: कटिए जम की फसल
1: और ब्रह्म की जिस मन भूख
0: नानक तिसे न लागे दुख
1: जिसको हर प्रभ मन चित आवे
0: सो सांस से हिला नहीं गलावे
1: जिस प्रभ अपना कृपा करे
0: सो सेवक को के सुन रहे
1: जैसा सात है सा दृष्टा
0: अपने कार्य में आप समाया
1: सोदत सोदत सोदत सीजे
0: घर पर चाहता समझे
1: जब देखो तब सब किश मूल
0: सो सुखम सोये स्थूल
1: मैं किश अन में न किश मरे
0: अपन चलता आप ही करे
1: आवन जावन दृष्ट अन दृष्ट
0: आज्ञाकारी कार्य सब श्रेष्ठ
1: आपे आप सगल में आप
0: अंत जितने अर्थात

0: सौजन सदा रोग
1: जो मंदर को थमे थमन
0: गुर का शब्द मने स्तमन
1: जो पाखान नाव चढ़ तरे
0: प्राणी गुर चरण लगने स्तरे
1: जो अंधकार दीपक प्रगास
0: गुर दर्शन देख मन होए भगास
1: महा उद्यान में मार्ग पावे
0: तो साधु संग

0: देवन हार
1: अब त्याग तुझसे चितार
0: जो किश करे सो ही सुख मान
1: भूला काहे फिरे अजान
0: कौन बस आई तेरे संग
1: लपट रो रस लोभी पतंग
0: राम नाम जप हृदय माहि
1: नानक पसते कर जाए
0: जिस बखर को लैन तू आए
1: राम नाम संतन कर पाया
0: ताजब मान लियो मन मोर
1: राम नाम हृदय में तो
0: लाद खेप संतान संचार
1: अब त्याग तुझसे
0: धन धन कहे सब कोई
1: मुखो जल हर दरगे सोए
0: पार बिरला बा पार
1: नानक ताके सद बले हरे
0: जन साध के तोय तोय पियो
1: हर प्रसाद कोई अपना जियो
0: साध की तूर करो इशनान
1: साध ऊपर जाइए करवान
0: साध सेवा बड़ भागी पाइए
1: साध संग हर कीर्तन गाइए
0: अनेक बिगनते साधु राखे
1: हर गुण गाए अमृत रचा के
0: ओट गही संत

0: नानक चौथे पद में सो जनगत पाए।
1: रूप सत जाका सत स्थान
0: सत केवल प्रधान
1: करतूत सत सत जाकी वाणी
0: सत पुरखा माए समाणी
1: सत कर्म जाकी रचना सत
2: मूल सत सत उत्पत्ति
1: सत करनी निर्मल निर्मल
0: जिसे बजाए तिसे सब भले
1: सत नाम प्रभु का सुखदाई
0: विश्वास सत नाने गुर ते पाई
1: सत वचन साधु उपदेश
0: सत जन जाके हृदय प्रवेश
1: सत निरत बुझे जे कोई
0: नाम जपता की गत होए
1: आप सत किया सब सत
0: आपे जाने अपने मित गत
1: जिसकी श्रेष्ठ सो करने हार
0: अवर न बूझ करत विचार
1: ते की मित न जाने किया
0: नानक ज्योति पावे सो भरतिया
1: विस्मन विषम भय विस्माद
0: जिन बुझिया कि साया स्वाद
1: रब के राज जान रात जन रहे
0: गुर के वचन पदार्थ रहे
1: ओए दा ते दुख काटन हार
0: जागे संग तरे संसार
1: जन का सेवक सो बड़ भागी
0: जागे संगे एकलिव लागे
1: गुण गोविंद कीर्तन जन गावे
0: गुर प्रसाद नानक फल पावे सलोक
1: आद सच जुगाद सच
0: है पे सच नानक होसे पे सच राष्ट्रपति
1: चरण सत सत परसन हार
0: पूजा सत सत सेवदार
1: दर्शन सत सत पेखण हार
0: नाम सत
1: आप सत सत सब धारी
0: आपे गुण आपे गुणकारी
1: शब्द सत सत प्रभु भक्त
0: सत सत सत जसुंदा
1: पूजन हार को सत सब होए
0: नानक सत सत प्रभु सोए
1: सत स्वरूप हृदय जन मानिया
0: करन करावन दिन मूल पछानिया
1: जाके हृदय बसे विश्वास प्रभु आया
0: तत ज्ञान तिस मन प्रगटाया
1: कहते निपो होए बसन
0: जिसते पजे तिस माई समाना
1: मस्त माहिले बस्त गडाई
0: ताको पिन न कहना जाई
1: जय भूजन हार विवेक
0: नारायण मिले नानक के
1: ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी
0: ठाकुर का सेवक

0: सेवक जिस दया प्रवतार
1: नानक सो सेवक सास
0: अपने जन का पर्दा ढाके
2: अपने सेवक के सर पर रखे
0: अपने दास को देव डाई
2: अपने सेवक को नाम जपाई
0: अपने सेवक की आपत रखे
2: ताकि गर्मत कोई न लखे
0: प्रभु के सेवकों को न पहुंचे
2: प्रभु के सेवक ऊंचे
0: जो प्रभु अपनी सेवा लाए
1: नानक सो सेवक दया दिस
0: प्रगटाया नीकी कीरी में कल रखे
1: पसम करे लश्कर को लखे
0: जिस

0: उठत
1: बैठत सोबत नाम
0: बोलो
1: जस जय बा दिन रात
0: अपने जन की
1: करे भक्त आत्म कह चाय।

0: अगन में रखे
1: गुर प्रसाद को मिला लखे
0: सो क्यों बिसरे जे बिकते काटे
1: जन्म जन्म का टूटा गांठे
0: गुर पूरे तत एह बुझाया
1: प्रभ अपना नानक जानते आया
0: साजन संत करो हे काम
1: आन त्याग जपो हर नाम
0: सिमर सिमर सिमर सुख पावो
1: आप जपो अपना नाम जपावो
0: भक्त पाए तरिय संसार
1: बिन भक्त सन होसी
0: शार कल्याण सुख निध नाम
1: बूठत जात पाए विश्राम
0: सगल दुख का होवत नाश
1: नानक नाम जपो गुण दास
0: प्रीत प्रेम रस जाओ
1: मन तन अंतर ही स्वाओ
0: नेत्रों पेक दर सुख होए
1: मन बिकसे सा चरण तोए
0: भाग जना के मन तन रंग
1: बिल्ला को पावे संग
0: एक बस दी जय कर मैं
1: गुर प्रसाद नाम जप लिया
0: ताकि उपमा कहीं न जाए
1: नानक रहया सर्व समाए
0: प्रभ बख्शंद दीन दया
1: भक्त वचल सदा कृपाल
0: नाथ नाथ गोविंद गोपाल
1: सर्व कटाक्ष प्रीत पाल।

0: नानक तुम्हरे शरण पर प्रधान
1: सर्वें कुंठ मुक्त मोख पाए
0: एक नमक हर के गुण
1: गाए भोग बढ़ाए
0: हर के नाम की कथा मन पाए
1: भोजन का पर संगीत
0: रसना जपते हर हर नीत
1: कलि सो करनी शोभा धनवंत
0: हृदय बसे पूरन गुरमंत
1: साध

0: वैर क्रोध के संग कमाल,
1: जब इसका वर्ण चिन्ह जापता
0: है, हरेक शोको कहां व्यापल,
1: जब अपन आप पार ब्रह्म,
0: तब मोह कहां के शोभत परम,
1: अपन खेल आवर्ती जा,
0: नाम करने हार न दूजा,
1: जब होवत प्रभु केवल तनी,
0: तब बंद मुक्त को किसको गने,
1: जब एक कहर अगम अपार,
0: तब नरक सुर को कौन उतारे,
1: जब निर्गुण प्रभु सहज सुपाय,
0: तब शेष शंकों के ठाए,
1: जब आपे आप अपनी ज्योत रहे,
0: तब कवन डर कवन का डरे,
1: अपन चल तब करने हार,
0: नानक ठाकर अगम अपार,
1: अविनाशी सुख अपन आस,
0: जन्म मरण को कहां बनास,
1: जब पूरन करता प्रभु सो,
0: तब जम के त्रास कहां के सोए,
1: जब अवगत अगोचर प्रभु एक,
0: तब चेतर कोष के पोछ तलेखा,
1: जब नाथ निरंजन गोचर घर दे,
0: तब कौन छुटे कौन बंधन बांधे,
1: अपन आप

0: केवल जगदीश
1: है। शाल शीतलक को कीश
0: है। स्वरूप ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समारे
1: किसे भूख का मंत्र तावे।
0: कर्ण करावण करने हार
1: नान करते का नहीं समारे।
0: जब अपनी शोभा आपन संग बनाए
1: तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई।
0: जय सर्व कला पे परवीन तै
1: वेद कते कहां को
0: जी। जब अपन आप आप और तार
1: तो सगन अप सगन कहां विचारे।
0: जय अपन ऊच अपन आप नेरा
1: तै कौन ठाकर कौन के ये
0: विस्मन विस्म रहे विस्मार
1: नान अपने गजनो आप।
0: अशाल अशेद भेद समाए
1: वहां किसे भी आप तमाए।
0: आपस को आप दिन आपे आदेश
1: तै गुण का नहीं प्रवेश।
0: जय एक एक एक भगवंत
1: तै कौन अचिंत किस लागे।
0: जय अपन आप आपतियार
1: तै कौन कथे कौन सुने हाल।
0: हो बेअंत उचते उचा
1: नान आपस को आपे पहुंचा।
0: जय आप रचियो पर पंच अकार
1: तै गुण में किन्नो
0: विस्तार।
1: स्वर्ग
0: जाल जाल माया जंजाल
1: परम पे पार
0: सुख मान अपमान
1: प्रकार
0: अपन खेल आप कर देखे
1: संकोचे तो नान के।
0: जय अवगत भगत आप
1: जय पसरे
0: पाक का आपे तनी
1: उनके शोभा उन्हो बनी।
0: आपे कौत करे आनंद चोज
1: आपे रस भोगन
0: जिस पावे तिस अपन
1: जिस भावे तिस खेल।

0: ससे सुन खतर में
1: वाणी प्रभु की सबको बोले
0: आप डोल न कबू डोले
1: सर्व कला कर खेल खेल
0: बोल पाइये गुण
1: सर्व ज्योत में जाकी ज्योत
0: स्वामी
1: गुर प्रसाद परम का नाश
0: नानक दिन में
1: संजना का पेखन सब ब्रह्म
0: संजना के हृदय सब
1: संजना सुने शुभ वचन
0: सर्वव्यापी राम संग्रह
1: जिन जाता तिसकी यह रहता
0: सत वचन साधु सब कहते
1: जो जो होए सोई सुख मन
0: करन करावन हार प्रभु जाने
1: अंतर बसे बार पी ओही
0: नानक दर्शन देख सब होई
1: आप सत किया सब सत
0: तिस प्राप्ते सकली उत्पत्ति
1: तिस पावे ता करे विस्तार
0: तिस पावे ता एक ओंकार
1: अन कला लखी नह जाए
0: तिस पावे तिस लय मलाए
1: कवन निकट कवन कही है दूर
0: आपे आप आप पर पूर
1: अंतरगत जिस आप जनाए
0: नानक जन आप जाए
1: सर भूत आप बरतारा
0: सर्व नैना पेखन हारा
1: सगल समग्री जा का तना
0: आपन जस आप ही सुना
1: आवन जानी खेल बनाए
0: आज्ञा काली की माया
1: सब का मादा लिप्तो रहे
0: जो कुछ कहना सो आपे कहे
1: आज्ञा आवे आज्ञा जाए
0: नानक जा पावे।